0: अपने चम।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों बैठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सिंह, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।

आज वो दौर आ गया है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ से भी थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन ये आशा जी की आवाज़ है जिससे लगातार सुनते रहने पर भी हम सब लोगों का लगाव बढ़ता ही जाता है। हमारी आशा जी जिनकी गायकी में हजारों रूप लेकिन व्यक्तित्व का रूप एक, जैसा अंदर वैसा बाहर, गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, दिल जितना बड़ा उतना ही साफ।